0: 다 지금 디징그 런거 망초 콘소아 저과 콘소아 지금 르고니 다 아르차스 이제 메카다 르 르히 톤리가 저기다 종거는 데나 비자 토고니다 망카소 런거 노르륵 칸더도군데 사사세 고네르 다로뇽에 사가도모 자코 체즈부시오네르 다섬 토고저 토고니가 데이나나다 서정궁에 테네다시 다르고다 잡처르 다 망아이너시
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱥᱩᱛ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱯᱪᱤᱨ ᱜᱚᱱ ᱮᱛᱟ ᱛᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱡᱤᱴᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱥᱩ ᱨᱚᱝᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱭᱚᱢᱵᱚᱵ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱩᱥ
0: ᱭᱚᱢᱵᱚᱵ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱜ ᱛᱚ ᱛᱚᱪᱠᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱨᱦᱟ ᱛᱟᱨᱦᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩᱜ ᱭᱟᱨᱟ ᱞᱟᱠ ᱛᱟᱡᱟ ᱠᱩᱥᱟᱥᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱣᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱵᱟᱪᱤᱨ ᱪᱷ ᱫᱮᱱᱪᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱥ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜᱮ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱛᱚᱪᱚ ᱜᱟᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱡᱩ ᱥᱤᱞᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱚ ᱪᱷᱤᱣ ᱛᱮ ᱛᱟᱣᱡᱜᱟᱱ ᱥᱚᱡᱱᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱡᱟ ᱠᱷᱟᱞᱠ ᱛᱟ ᱭᱚᱱ ᱜᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱡᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱫᱟᱣᱟ ᱡᱮᱞᱚᱠ ᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱡᱟ ᱞᱚᱠ ᱭᱚᱝᱜᱩᱞ ᱚᱠᱟ
0: ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱨ ᱥᱚᱭ ᱥᱚ ᱜᱚᱨᱛᱟᱣ ᱛᱮ ᱜᱚᱥᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱡᱟ ᱠᱷᱟᱞᱠ ᱛᱟ ᱭᱚᱱ ᱜᱚ ᱭᱚᱠᱭᱟ
1: रे रे माओवा ना ता लामखंडा मुछि छिछि निगछि सेक
0: रे ता माओवा ना रे ता दछो इकु लिजु ग जेमसन छस गरे ता ना ता थनजी ली याना ते ता रोन्यु मे सो सागन द इकु ली गनो तरे ते ता ना दछो इकु मिल कं रे ना ता माओवा ना ता रंग र नोरलक खा दब शेर सो छु ग मि सो तरे ता दे ता ना दन जो का मानसो क जि ngछि खारा त सोरा त न्योगरि ससुरा ता तिर जिंग सोरा ग न आतिना
1: रे चिसु तासंग सोबसं डेमखिल के सु थोंजि छिस केरो
2: मोचो इंगेना थोंजि खारकम गरग क नाखाज गा चक हाज किरो मो नोरनक दि स्कानि ग खाग दि नोग खारकम गा नाखाज गा चक हाज मो सो नोरका छो छो नोरका लिब लिब नोरका रि रि तनि नोरका खारकम तमोज गा नाका तनि थोंजि रि रि यंग जमा मन्दान नाका निसम रि ओकमो तमोज छि
1: chachu sani kange?
2: Ngocho sani mdolaagi mo. Mdolaagi ngocho keli gina nga ptongkhun chanir kanzani. Daga ngocho keli nchongi na nga nirtong nga tamba ga zhigni ntarshin nogo lhoma chukka xzoi lhobchin lhoma chukra. Dani sani ga nukha jimazira nyam ga nga dang ga da keli zibzgo nogo tamo ga chanir kanzani.
1: रे लोटा छेमु तक्षर यु लीगु सरपे को
2: ओ लीगु सरपे को तमो फमा चुगु तंग न्याम त दि द खेली नमो जनिर को नि तमो गना बाजे मो तग ngo chu khelin chon gina thumar di stansa ga korkun di uchu shug zo sopin di korku hanchini tar ngora thonli xarpil thonli xarpin di lakana ngo chu rang zo da rang thonli rang da thorchili ji tik kono nam bazer mo tani xsam ba mo engina yang da da ngo chu stasan do jer jer jeri lakana yirku da tamo yang ne lek da oni tamo nam bazer
1: ᱡᱮ ᱪᱩ ᱧᱟᱜ ᱪᱷᱟᱡ
2: ᱤᱧ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱮ ᱪᱮᱵᱡᱤᱱᱤ ᱟ ᱤᱧᱜᱮᱱᱟ ᱧᱤᱨᱛᱚᱱ ᱤᱠᱥᱛᱟᱥᱢ ᱞᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱢ ᱨᱮᱜᱞ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜᱞ ᱦᱚᱢᱟᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚᱥ
1: ᱡᱮ ᱛᱟᱥᱢᱡᱤᱜ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱱᱩᱜᱤ ᱡᱤᱜᱱᱮᱛᱟ ᱭᱚᱱ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱛᱚᱱᱮ
2: ᱚ ᱛᱟᱫ ᱢᱚᱡᱨᱮ ᱟ ᱥᱩᱝ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱᱟ ᱚᱛᱩᱡ ᱠᱮᱭᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱤᱨᱠᱚ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱡᱮᱱᱫᱮ ᱡᱩᱠᱴᱚ ᱟᱭᱩᱞᱤ ᱡᱮᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱤᱠᱷᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱞᱤᱨᱠᱚ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱤᱛᱟᱱᱤ ᱢᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱨᱛᱚᱱ ᱤᱠᱥᱛᱟᱥᱢ ᱞᱚᱱ ᱛᱟᱨᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱚᱝ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜᱥ ᱜᱚᱠ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟᱜ ᱧᱮᱢ ᱜ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱪᱟᱱᱤᱨ ᱠᱚᱱ ᱛᱩᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱞᱤᱨᱛᱚ ᱞᱚᱠᱚᱢ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱡᱚᱞᱤ ᱛᱟᱱ ᱟᱱᱫᱤᱱ ᱟᱥᱩᱜᱤ ᱛᱟᱜᱡᱚᱱ ᱚᱪᱩ ᱧᱮᱢ ᱜ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱤᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱤᱝᱠᱤᱱᱟ ᱚᱪᱩ ᱡᱮᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱨᱚ ᱟᱱᱫᱤ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱩᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱜᱤᱨᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱱᱟᱠᱟ ᱪᱟᱠᱟᱡ ᱜᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱚᱱᱚ ᱫᱚᱢᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱤ
1: ᱚᱡᱮ ᱢᱟᱣᱚ ᱯᱟᱱᱟᱱ ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱷ ᱛᱮ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱵᱥᱤᱢ ᱵᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤ ᱞᱷᱟᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱜᱤᱭᱚ
2: ngochu homaz gam chongjena thumar rang pha yek ochu dogin thor gang ga norna tang lugin di ngoluk kan di ran thong to shi ga chomra kem go na to thonji jen na kha mangaz ga thonji na kha mangaz ga tang ja ga ta she jam go mo to ingena di la ka

0: 下那个两寸地呢啊，我去中期收入将都赔给我，从从所干年挣八个挣的用的等，俺人都打村都跟这样看的了，电器个做不成跟这样看的电器用的等啊，啥你忙速个打啥你那个确定个囤积忙不是个年代去了我那个，你是了，就恁这个就行了。
1: 呀，确定么？呃，对么对么？打通就是说恁这样看的，囤积是不是去了？
0: 我去屯子，那当那卡子个派出所家那个怎么子情况？可一个那当呢？对当那我去做情况就，当看看个电器的卡车，啊，车的卡车，啊，等你这个拉手把它，等那屯子，家看啥子情况？
2: 这去娘家是没？
0: 我娘老早当真事了。
2: 这去娘家坑子跟俺这边呢？
1: 啊，人，我去娘家坑那学历学历才有公司事了。
0: 这，但其实你们那个屯子，忙车去的人，车辆上那了，卡上车辆上。
1: 卡上车辆上。这，东北其实你们那个屯子，哪个都有。我去打屯子，哪个这个，俺这个做东西工的没，打的一等那先把个屯子里头的一股，打，等你打上个这屯子那卡，打那卡，接东西车辆上。
2: 这，卡上这人，这屯子那个你是个哪个人？什么子？
1: 人们都，也可能你是哪个大学？你听那些啥个？你们现在是当哪？等于人们都是给的那，当，让你们啊这个去，等你人格从那边对的那去接啊送，当然，第二天你就，你们这些材料在意，你们这些材料要了，马克思没一个用的，当那他打算人们从哪去了？是人们都是啷个比较凶的？他卡上这人，你看这个人们都也那，你们这些你怎么也没个？
0: 有可有可有可，你们这些。
1: 现在有可，你们这些可能就忙活过，就能落差你用的，都没得，但是还当养那，年不拉少，他出来的就个，打这个打那个，那个扎土呢，扎那么几的马卡中国呢，都讲过个，说的呢，你们这些可能忙有。
0: 这，但你们这里呢，所以你们这个南边的几个月工的是？
1: 你们这个哪去打？所以现在我去个从这个当养那的，你这个可给，打下午个这个地拉开呢，还拉种的。
0: 等你到我去打，用电不充个工作不行的，到里才有马卡做打我去个，你用的还是充足个，你们这家都得的。
1: 是是，这个呢，到卡上头人家从哈那么什么子叫他？从打过么？从你什么子个从？么呢？打你这个马就打了，打马卡做这个也么这个，这个么子个啤酒，他是做的，俺说着呢。
0: 是是，这个呢，就是个年龄看的，年龄大多，年龄看的那个公司呢。公司呢，公司。是，就是公司的年龄大多，他他们那边那么几个年龄的，他年龄跟他的年龄的那几个年龄的那边年龄。年龄那边年龄的，嗯。是，听我这个呢。他当年纪那个去跟的，他年龄那边一点的。
1: 年龄大公司跟那吧，一大利，大伟大公司跟那吧，一利个那都么子，那当那那忙错了得了，然后加起来个叫一个，大马刚了得了，那那有那是。
0: 就人给他上去那，其实年龄看的，年龄大做个，人家们那肯定男子肯定不离年龄的。年龄大，像那个老大马卡做，他当年就那个去喊的这个，宗教他都没给的，大伟大人家那得了，大马卡做喊的，努力个喊的，这个是宗教的，没做，就是啥宗教的，他从来没得信的，都么子的，对当那的，大概的人们大概的，养起个，还个兄弟了，就是养团子个，人家去有那啥个把子的，他，继续，今年他团子，那看的就，人家去接接了个了，养那起嘛就当那个就么子的。是，团里的年龄可能他那个可是些个。他看他是个有个，人们现在是当那的，这个从那，这个刚开始不是有个，所以说呢。
2: 他确实有，还六十六岁的，但是他人家，人家，但是我去个村里面的，这个，科技啊，这个呢，就是什么的。是，他哪能只能是去做人们天天的用？
1: 哪能用嘛用？哪能用嘛用？俺打算偷东西呢。
2: 啊。是是，但其实，公司的到上今天天性个啥呢？人家没过那那了，相信是能少少没过那个公司。
0: shangchim shenang ta shangchim shenang am ko no go konsa zin de dang na ta mang wa na yang chi ta ga ma kha cho yang chi rang ga chong zin na sho ko ma khan da ta ga jo thu ga re yo a
1: re re ta chi chu thon zi ta song jin na san ni rang ga thon khu ngo ma in re la shu so so ni ta shu di ga na ba jin
0: rang ga sa ni ga thon zi ngo ma wi in re de dang na ta ta nga meng ga rang ga cho de ta chi ga zo chai na sho ko yang na chi ga sa lang da ni ta kha ra da yu ku ma ran de ko rin da ni li tani tayi kono ku jimsin tamu zire cha mangwa ga inje na ta nga shira rangga ta di kharkam ra nda kha tsa ra nda shok gong in rongwa ra tonzi tsama rangga li ju ga charja ta in
1: re chachu tonzi nda chachi chazgyo
0: ta chachi inje na rangga saagni ga nol ka kha tagma ga tagma tag changgali in re ta chang gzi chang xisi dali tayi dali ye maanyong na chango nol ka darsa khil tagma ga kha nda dhugunda in re
1: रे चेचु साजेग नोट तो संगना सानी जंबग नोट तो मर्सिक साग छाची रंग खादी ना छुक त सिनसु कोए ना छुक कुले ना छुक द छुना छाची ओनर
0: यो नर यो नर दंग छु संजना तासमा गंदोला गंग जिक नने खरगे छिन थोंबु गंग सेबजिल दान थों खरगन थोसला तोंसो रनारा ᱡᱟᱵᱡᱟᱨ ᱱᱤᱠᱥᱟᱵ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟᱝ ᱟᱪᱩᱨ ᱛᱟᱜᱢᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤᱞ ᱜᱟᱹᱱᱤᱵ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱜᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱪᱮ ᱯᱮᱪᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱯᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱤᱡ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱡᱩᱝᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱮᱫᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱨᱟᱥᱟ ᱠᱟᱝᱢᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱤᱭᱚᱠ ᱛᱮᱠᱷᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱥᱢᱟᱜ ᱟᱪᱮ ᱛᱟᱜᱢᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱱᱩᱨᱞᱤᱠ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱣᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤᱨᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱩᱝᱨᱡᱮᱴ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱨᱤ
1: जे जे ता केछु न्यामले खनना ने हालम छमु जों तावर कोनसे गना ना
0: दार्क नछु ता ता कोनसे नेर कोरि छछु छि थो दङ नछु न्यामले खंग न्याय दले नेर नरे न्यामले खंग न्याय दले नेर दले तावर इंजन ता मार्कन ता रख सोसो ग मार्कन छिरि समय ता जाछा जाउ छमसंग ग जाछा जाउ ग मार्कन तबजे ग दले ता जनेर कोनि तमस दे दना तांग छु थेमचिन जों sarishang sonjina rkhangaw rkhangaw da nya tongzgra rngabja khalkh da tumyo chire te tona ta ta chu ga khirge markang nyamli kha da chungma chhe ga loglog i ta na shig da ch
1: je je ta chi chun de sajung ge ngethani yap chure chhe chi yon
0: ta sajung ge ngethani jina da rong chur zung ne ta zu zu shigli ge thonzi in da shir zung sa ga ng chho thotsag khonsag chhe zgli yon re te na ta te nanang jina gormo chhur gib jar jib chhe khalg tang dali ta thok chot nje bon re de dana chik thog injina nga chi ma kha chu chu da ur ka thonzi ga ndirin da ta rang sa gni ga thonzi da shir chung yi so ga ta go tum zre de dana ni thog injina da rang sa gni ga lakhi ta chi ga ti jing ga rang mang chok chwa ndokwa ga chwa chi ga rgoni ta archasi je me ka ta lag lag hi ton li ga rig da zong gon de na je to ni ta ma ka zo rang ga nor lik kha da da gon da sa sa sa gon da ro nyung sa ga da mo za ko che zu shi yo na da sam to ga je to ni ga de na na ta sa jong gon ni ta ni ta shi da ro ko ta jap chur da ma ga yin ri
1: ri ta chi chu ta sa jung ge jap chir gu ne ta tamo zun zhi chen ta na chi chu rang ni ta lu je je yong bup la ka ni chu mu
0: yong bup la ka ne sha ge to chu chen ji na ta pha chir tar nga wa ra dang chu ge ya ra la ge za za ku sa so ta ta zun chen ji na ba chir chi den chi ja chi kor ji ge ko ne re ta te dong na tar ku to so nga chu ta ta ru ge zu shigli thonzi ga ta thotsog chiu de ta zgon so jina halam ta chiu ja khalq ga da yong go ra ta tar ka yoni dum zri
1: re da wa jal lok ra ta chiu ja lok yong go lo ka
0: thonzi ga shir chong so go ta go ti go shi de le ta war ta ta chiu ja khalq ga da yong go yo ke ya
1: re re ma wa na ta lam khan da mu chi chi chi ni chi se ge
0: re ta ma wa na ra ta re tan da shu yi ku li ju ge jem sin chis ge zi ta na ta thon zi li yang na ti ta ro nyung ye su sa gang da yi ku li go no ta re te ta na da shu yi ku mi il kang ra zi na ta ma wa na ta ro nga ra nor lu ke kha da shir zong ye chu ge mi so ta re da 대이당나 단 조가 만속 지 같이 하라다 소라든 요구리 사소라 다 디징그 소라가 나갑디나 아 다스 그 공츠 그 하마신들 노르치가 고르모자 탐바가 카스브라 르치가 고르모치 탐바가 카스브다도 신달이 다 뇨고노 그 점선도 무즈리 대이당나 다 망와글라케라 단도모 마즈 리고노 그 점선 다 노르르크 한도 시르종즈게 달이 조가 만속고 용르고도 젬토치 언조고 무일대야
1: 레레 테랑 챤데 탄리 노 티치치
0: 야야 과트치 야
1: 야야 데모
0: 야야 안도자바 데모
1: 야쇼 데모
2: 데모 건자바
1: 레 치슈 따퉁거 소프상 렘클케 수 톤지시스케로
2: 뭐초 인게나 톤지 카르컴 거르크 나카즈가 쩨카즈키로모 노르닉 디 스코니기 카글디노고 카르컴즈가 나카즈가 쩨카즈모 소 노르카 초초 노르카 리블리 노르카 리리 다니 노르카 카르컴 도모즈가 나카 다니 톤지 리리앙 쩨마먼다네 나카 니스므리오코모 도모즈시
1: 계수 산이건게
2: 먼저 상님 돌아기 뭐 돌아가 뭐 축켈이기냐 보통은 처니르건즈니 더가 뭐 축켈이엔 손기나 아니 또니 탐바가 죽니 인터신노글 호마 쭉크 조이 호친 호마 쭉으라 더니 상니 그 녹화 기마즈라 냠그냐 등그 다 켈리즈 뜨고노고 또모가 처니르건즈인
1: 레 로프타 쳔무 뜨그시르 용 리고 사르페코
2: 어 리고 사르페콘 도모 포마 쭈그 똥 냠트 엔디 다 켈리노 모 존이 코니 도모 그나 바제모 데고 모 쭈켈린 손기나 토머 엔디 어 자사가 코르컨디 오추 슈그적 소핀디 코르크 한치니 타노라 톤리 사르필 톤리 사르핀디 라카나 모 쭈 랑고 조 랑고 톤리 랑고 다 토르킬리지 디 코노나 바제모 다니 흐샘바 모 엔기나 양 다다 모 쭈 자산도 저저 저저기 лакана йеркутта томоян нелек дауны тому набасыш
1: же кюнгасызым
2: мен артам лекебзин яңа ингена ньютоник стахсым лон сунгымыр гылпчени шымжиг хоман таршин тумоз
1: же та шымжиг хоман таршин ноги жигнета юм лигу сарпе тоне
2: а та тумоз яңа шун хочина утуз кыян жиг лирко сарпе денде жиг тоа юли генде ярмара хожомре те сунгы ярмара жиг томог кели лихто к томог дача секунд домо шанг гэ томог лиргу на шукда не мо та не та не то не кстасам лон таршен рэп шара он домог картыгыз гок топчин хомаг ням г домог чанер кон зуги жиг лихто ли ком домог корку зёли та ган динга шуги тазон очи ням г хэри и да дарнга ингена очи джимжин дан ду анди норка тон лухан ду тонжи жан ду гэри жиг тонжи на кача казга сапи он домо на бас
1: ᱡᱮ ᱢᱟᱣᱚᱱ ᱯᱟᱱᱟᱱ ᱰᱚᱞᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱵᱥᱤᱱ ᱵᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤ ᱞᱷᱟᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱜᱤᱭᱚ
2: ᱢᱚᱪᱩ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱭᱤᱠ ᱚᱪᱩ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱚ ᱱᱚᱨᱱᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱱᱚᱜᱞᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱟᱱ ᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱮᱜ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱠᱮᱢ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱡᱮᱢ ᱜᱚᱜᱢᱚ ᱛᱚ ᱤᱧᱜᱮᱱᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱚᱪᱩᱨᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱡᱨᱟᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱠᱨ ᱛᱚ ᱦᱚᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝᱤ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱞᱩ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱡᱮᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱮ ᱡᱤᱨ ᱟᱛᱷᱚᱵ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱛᱮ ᱠᱟᱞᱢᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱪᱩᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱤᱭᱚᱢᱚ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱨᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱰᱚᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱜᱱᱟᱝᱜ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱥᱟᱢ
2: ᱫᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱵᱤ ᱚᱠᱪᱤᱱ ᱥᱚᱞᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱩᱱ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩᱠ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱱᱚᱨᱱ ᱜᱨᱟ ᱡᱚᱜᱞᱩ ᱜᱨᱟ ᱢᱚ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱞᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱩᱱ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱫᱟ ᱟᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱟᱢ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱨ ᱢᱚ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱥᱩ ᱥᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱩ ᱡᱚᱠᱤ ᱱᱚᱨᱱ ᱞᱩᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱡᱢᱟ ᱠᱮᱢ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱚᱠᱪᱤᱱᱫᱤ ᱱᱚᱨᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱠ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱨᱤᱵ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱨᱠᱚᱱ ᱚᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱜᱩᱡ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱩᱡᱩᱞ ᱪᱮᱪᱩᱠ ᱠᱩᱢᱱᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱟᱨᱜᱱᱟ ᱠᱮᱢ ᱛᱩᱢᱱᱚ ᱛᱚᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱛᱟᱢᱱᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟᱡ ᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱡᱜᱨᱤ
1: ᱪᱮᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜᱛᱮ ᱠᱮᱨᱩ
2: ᱢᱚᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜᱪᱤᱠ ᱥᱤᱜᱚ ᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮᱛ ᱢᱚᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱤᱨᱚᱝ ᱭᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱪᱷᱚᱠ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱢᱚᱪᱩ ᱪᱟᱭ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱨᱟ ᱞᱚᱱᱚᱨ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱢᱚᱜᱤᱡᱟᱜᱤ 노르칸 도 시기 샤우 이터던 감던 되게 동도면 소고 뭐 저기라 소고 아른 상조지 도모가 등을 메까 양 노르카가 마르트 사트브가 더가 니야 뭔지나 양 노르카 리지 노르카 리브리 지지게 쳇속가 쳇속고너다 다가 톰라 거금쿰 멍텀비 군코 동타니 지게다 노르카 리브리 노르카 리지 지게 톤지나카즈가 어저랑가 나 주즈디 게이던 지게다 ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱫᱚᱱᱡᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱫᱚᱱᱡᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱨᱚᱝ ᱜᱟᱪᱷᱟᱥ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱨᱜᱟᱢᱥᱤᱠ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱭᱤᱡ ᱜᱮ ᱴᱨᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱤᱞᱤᱭᱚᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱱ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱨᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱴᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱷᱨᱡᱩ ᱛᱟ ᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨᱮᱞᱟ
2: ᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱚᱪᱚ ᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱡᱮᱢᱯᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱞᱚ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱴᱨᱢᱟᱛ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱜᱟᱨᱤᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱡᱡ ᱫᱮᱨᱜᱟ ᱜᱟᱨᱤᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱪᱟᱢᱵᱚ ᱜᱟ ᱜᱟᱨᱤᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱴᱨᱢᱟᱡᱤᱜ ᱥᱟᱱ ᱥᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱟ ᱛᱚᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱚᱪᱩ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱫᱨᱟ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤ ᱜᱩᱝᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱟᱜᱮ ᱫᱟ ᱴᱨᱢᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱱᱨᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱪᱮᱥᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤᱜ ᱜᱟᱱᱡᱤᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱭᱱᱟ
2: ᱟᱝᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱜ ᱫᱟᱫᱟ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱨᱪᱤ ᱡᱚᱛᱤ ᱛᱚᱨᱟ ᱫᱤ ᱥᱮᱨᱛᱚᱱ ᱤᱡᱩᱱ ᱜᱟᱱᱡᱤᱢᱵᱟ ᱥᱚᱭᱢᱚ ᱛᱚᱜᱮ ᱚᱪᱩ ᱜᱟᱱᱡᱤᱢᱵᱟ ᱧᱟᱜ ᱮᱫᱢ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱨᱱᱟᱨ
1: जी जी ताई किचु कौनसा ताऊ संगीन तावर निर्णुग निश्चित रामु छ मुझे
2: मचो कौनसा तो दाम फिर जी लाम कशु किस को लोग जरंग आंगा टुक्स गोरता तो की तो मना मचो रंग सागनी संगीन रंग सागनी ने फिर जी चिकिस मचो चिप्ची की शायद ना मचो कौनसा तो चिकिस चिप्ची को फिर जी तो चिकिस जोनी ना बैठो मज़र मो जब से मचो मचो खंडे तो चरा शे जो चिक छों छों को हो चों हम आते तो ला तो गन नुआ रहा था नी चिक चिक तर जे तुर जे चिक ला के अंशा गनी नी मचो ᱚᱪᱤᱢ ᱥᱚᱱᱜᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱜᱩᱞᱟᱝ ᱟᱡ ᱚᱪᱤᱢ ᱥᱚᱱᱜᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱥ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱠᱚᱢᱮᱱ ᱡᱟᱜᱚᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱥᱚᱱᱜᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱝ ᱚᱱᱛᱚᱱ ᱮᱱᱨ ᱢᱚ ᱛᱚᱜᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱩᱨᱡᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱝ ᱱᱩ ᱟᱭᱚ ᱥᱤᱜᱞᱟ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱝ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱝ ᱚᱪᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱱᱚ ᱥᱟᱫᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱜᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱡᱚ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱩᱝ ᱢᱟᱨᱛᱩᱜ ᱱᱮᱢᱛᱩᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ
2: ᱭᱚᱝ ᱚᱪᱚ ᱛᱟᱨᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱞᱚ ᱡᱟᱢᱚᱨ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱨᱮ ᱞᱚᱨᱮ ᱚᱪᱩ ᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱠᱤᱨᱚᱝ ᱱᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱡᱮ ᱪᱩᱜᱤ ᱱᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱡᱟᱜ ᱢᱚ ᱫᱚᱭᱚᱝ ᱫᱟᱱ ᱢᱟᱱᱡᱟᱜ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱛᱟᱣ ᱥᱟᱝᱜᱱᱟ ᱡᱮᱢᱥᱮᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱤᱜᱱᱚ ᱫᱚᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱱᱰᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱦᱤᱛᱮ ᱠᱟᱨᱮ
2: ᱢᱚᱪᱩ ᱥᱩᱝ ᱚᱪᱩᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱪᱷᱟ ᱢᱩᱡᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱯᱷᱟᱱᱰᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱦᱤᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱡᱚ ᱪᱷᱟᱡᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱮᱨᱛᱚᱢ ᱮᱛᱠᱟ ᱟᱱᱤᱱᱤ ᱥᱮᱨᱛᱚᱢ ᱛᱷᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟᱞ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱨᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱴᱤᱜ ᱤᱱᱛᱮᱡ ᱤᱛᱟᱯᱠᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱚᱪᱩᱱᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱯᱟᱱᱥᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱨᱤᱜᱤᱱᱡᱟ ᱢᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱪᱚᱛᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱡᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱢᱚᱪᱩ ᱢᱚᱪᱩ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱧᱟ ᱠᱚᱥ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱷᱤᱥ ᱜᱚ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱪᱮᱢᱩ ᱧᱮᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱥᱨᱟ ᱭᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱭ ᱥᱚᱱᱨ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱚ
2: ᱟᱨᱮ ᱧᱤᱝ ᱩᱨᱡᱚ ᱠᱟᱭ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱱ
1: ᱡᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱭᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱣᱟᱨᱛᱱᱟ ᱜᱟᱫᱟ ᱭᱚᱠ
2: ᱜᱟᱫᱟ ᱢᱮᱠ ᱱᱟᱫᱟ ᱢᱮᱠ ᱥᱚ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱨᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱩᱠ ᱟᱝᱟ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱ ᱟᱝᱜᱚᱡᱤ ᱱᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱡ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱥᱟᱨᱯᱤᱠ ᱫᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱥ ᱜᱮ ᱞᱤᱜ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱞᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱚ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱮᱥ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱚᱠᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱚᱱᱡᱚᱝ ᱛᱚᱫᱚᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱥᱟᱡᱩᱜ ᱱᱚ ᱪᱷᱤᱥ ᱠᱷᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱥ ᱪᱷᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱷᱤᱥ ᱛᱟᱵ ᱫᱮ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥ ᱠᱚ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱚᱜᱮ ᱫᱟ ᱚᱪᱷᱤ ᱨᱟᱢᱟᱱᱛ ᱫᱤ ᱜᱮᱥᱟᱨ ᱯᱤᱞᱤ ᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱠᱠᱚᱨ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱮᱫᱟ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱱᱠᱤ ᱢᱟᱝ ᱟᱡᱮᱫᱟ ᱫᱤ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱢᱟ ᱮᱠᱩᱱ ᱫᱩᱜᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱞᱟᱥ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱠᱟᱠ ᱢᱟᱝ ᱟᱡᱮᱜ ᱴᱷᱟᱠᱱ ᱫᱩᱠ
1: ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱪᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱚᱝ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱮ ᱚᱱ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱪᱷᱤᱛᱤᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢᱠᱤᱞᱚᱠ
2: ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱚᱪᱩ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱠᱩᱱᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱭᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱟᱡᱚᱠ ᱛᱤ ᱡᱮᱢᱥᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱭᱚᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱠᱩᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱫᱟᱨᱚᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱷᱚᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱚᱪᱩ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱠᱮᱞᱤ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱧᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱛᱚᱜᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱪᱮᱢᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱨ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱱᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱜᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱚ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱥᱮᱱᱫᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱠᱚᱢ ᱥᱮᱱᱫᱢᱡᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱵᱡᱚᱝ ᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱦᱤᱡᱤᱛᱮᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱥᱱ ᱨᱟᱝᱜᱞᱚᱝᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱢᱱᱟ ᱪᱚᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱵᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱢᱟᱝᱟᱡᱢᱟᱨ ᱠᱚᱢᱚ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱢᱚ ᱛᱚᱜᱮᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱛᱟᱨᱡᱮ ᱛᱩᱨᱡᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱛᱚᱵᱡᱚᱝ ᱢᱟᱭᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱦᱤᱡᱤᱛᱮᱨ ᱠᱚ
1: Ari chishu konsa tawa songe na sajung nga tani gyabchir shimu iyo nish?
2: Ngocho konsa songe na yang sajung ka gyabchir yang maa tewa kuda wana ro. Ngoma shaki na ngocho rangga zobchan dan zhugyo la kare, rangga andi shikizog sorpi kandi la kanyang konsa ka da tanga andi sajung ka dawar ka da jiga sajung ka chasgo rukhchir sarjime ka, sajung ka da chanlaq ka rukhchir sarjime ka, maangak ka rukhchir sarjime ka, da nipsh lihze ka kaya sarjime ka.